आदम थरुम ताबिरी बसी एफएम संगाई चैनल देगिनी आकाशवाणी इंफाल हौजिक लौबिरसी सीदेहिदा ngalingai madam dagi mana mashing gi laying pathab asi lisang sitna jathaduna ngasi ngasi makshu sizinari ngasi ki sidahidak ki thoramda pujarakli janam

0: गनो जगोया नहे जगोई शाबी ले शाबी ममई मको खंगे जगोई शाबी ले शाबी ममई मको
1: तांजरी वेसे से गलोना तंगा गशी की वेना तोगान तोगान बा से सक पसिंग न सक बा मतमी शे लांतोक चबा लोजेरी आकाशवाणी इम्फाल हौसिक पुंफम मसिदा संदोक चेरी रेडियो क्लास सहुम ग हुंपुतरा तरे छुब तांक ngasi gi tangkak ta class 6 gi english lesson gi king solomon thoramasi department of education is samagra shiksha manipur gi tengmang makada putok chaba thoramni

आकाशवाणी इम्फाल हौसेक संदोक्षरी अतोप मंगाल थोरम मसिद भारत की अनौब एजुकेशन की मायोंद समग्र शिक्षा न पीरीव कानव सिंह एक्सपर्ट होने लेंसीगदब डॉक्टर थोक्सोम केनेला देवी रिसोर्स पर्सन आर टी ई जेट यो जोन टू उनबीरीब थोरम पुथोप रायचंद्र सिंह थाम

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे मणिपुरी मरुएब पाव ताविरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजे फाव की मरुएब पाव दा ममा अमसुंग पिकलेब अंगांग की याइफनब की दमक अंगांग अनी की मरक ता नाउरोन लाउनब अमसुंग मतम चादना मिरोन बदेगी ngakthopa हाइब हिरमदा राइजे थक की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिसिंग अनी कुंतरो की थौरम असी पांगथोकली थौरम असी राइजे सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेस स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर ने सिंधुना इम्फाल की सिंगमेरोंग देलेबा क्लासिक ग्रांडे दा पांगथोकनी राइजे की इंफॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशन विभाग ना लेप्तना चथरकलीबा मीट द प्रेस थौरम दा ngasi पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी विभाग का उनगनी इम्फाल की नीता पाचुटेक्ट लेबा डीआईपीआर की ऑडिटोरियम दा पांगथोपा थौरम असदा पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर अमदी मकोक थोंबो ऑफिसियल सिंग सरुक यागनी सयोल अनी चथरक बस्टेट हैंडलूम एक्सपो हट घर घर मेला लिसिंग अनी कुंतरुक ngasi लोइसिलगनी इम्फाल इसकी नीला कुथीदा लेबा अर्बान हता चथरकी बा मेला असिदा खुचा हैबिगी पोथोक्सिंग उत्पा पुन्न स्टोल हुंफू हेन हांगली केंद्रीय लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री मनसुख मंडाविया ngasi लुपा कोटि चतुर्क हुंफू निपान चंगना पाइकपा हक्सेल की प्रोजेक्ट तरेट एम्प्लॉय स्टेट इंसुरेंस हौदोकलगनी असम सरकार ने हौकी नोमाइजिंग निमित्ता राइजे सिंब थुंगबदा ड्रग मांगनबगी कैंपेन चथब हौक्रे नलबारी जिला तरह मरी सूब असम पुलिस बटालियन ग्राउंड हौदोखी थौरम मफम क्या फागल्ब लुप कोटी चमरी हूंद्रा हूदयरों की ममल ओगदब ड्रग मई था मांगी इंडिया मेट विभाग मणिपुर नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा नोंचू बेंगोल सिक्किम असम मेघालय की मफम खरद नो कूगनी विभाग अभी बिहार ओरिशा की मफम क्या नो का हेन कूगनी मणिपुर की जिला खरद लाबनी अखा अराग लोन नो चूगनी अमरबाटी चैंपियनशिप की अनीसुब एडिशन हयेंदगी आंध्र प्रदेश हौरगनी आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स ऑथोरिटी की चेयरमैन ए रवि नायडू ना चैंपियनशिप असिगी ऑफिशियल पोस्टर विजयवाड़ा ngarang हौदोक्रे पाउ लोजरे।

0: आकाशवाणी इम्फाल। हौजिक पुंग 10 तारीख मणिपुरीदा मरुएब पाओ ताविरसी।
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक फाउबुकी मरुएब पाउदा मणिपुर पुलिस अमसुंग 13 सुबा गरवाल राइफल्स नंगसी सुरासानपुर जिल्लागी के थेंगजांगबा विलेज दा ऑपरेशन चथखरे। मणिपुर पुलिस की पाव मतुंग इन ऑपरेशन अदुदा मफम अदुदा लैब उमंगदगी खुसु खुलाय अमदि पोखाइब याब मसांग उथुम सिंग फागले हाइरी। मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सिंधुना इम्फाल की निलकुथी लेब अर्बान हत सथर स्टेट हैंडलूम एक्सपो लोसीलगनी। थासी की मरी दगी सथर एक्सपो खुदसा हैबगी पोथोक सिंग उत्प स्टॉल हुंफुरोम हांगली। मणिपुर दंगसी राज्य की फैमिली वेलफेयर विभाग सिंधुना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थरुम पांथोकली। स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर का खुसमनना सिंब थरुम फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर डॉक्टर एन बिनोद सिंह अमसुंग स्टेट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर एम दिनेश ने सिंब सरुक यागनी। लिसिंगनी कुनिपान कुनमापन ताम की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर मिखल की दमक इंडिया की कैंपेन हौख्रे। भारत की कैंपेन अदु न्यूयॉर्क ते लैब यूएन हेडक्वार्टर्स ता केंद्र की मपान थवर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हुदोखी। नोंसु बेंगोल दे ही लाक पगी थौदोग अमदा गामी मापन सिरे तरुक नथिब खंगदन लैरी। थौदोग अदु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अमदि प्रधानमंत्री ने नुवाइतब फोंदोरखली। ही लाक पगी थौदोग ते लैखिद्रब मियोय सिंग द खेती पुरोन ओइना लुपा लाक अनि एनि अमसुंग असोक पसिंग दना लुपा लिसिंग याखै याखै प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड गि पिरगनि हाइना प्रधानमंत्री ने लौथोखरे। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की टैंकर अनि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लानब हनबद इरान की क्रूज मिसाइल कपसिलपद भारत मचा अम सिरे निपान सोखले। असोक सिंग मनुंग मियोय मरी की फिवम लुना लैरी हैरी। अमसुंग उड़ीसा भगवान जगन्नाथ बलभद्र अमदी देवी सुभद्र की नब जौबन दर्शन मसी पुरीद लेब श्री श्री जगन्नाथ मंदिर द पांथोकलगनी। थौरम असी की दमक डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी अमदी पुलिस ना अकनबा गाक्सिल की थौरांग लौखले। पाउ लोइजरे।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: sonu nigam amadi kavita krishnamurti degi gidama taviri
1: polis
2: miss seema
1: ji
2: abhi police station aayi hai rukiye वरना घर आ जाएंगे आप
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 बच जाओगे
1: इतने पैसे
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
1: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
3: हेलो मम्मा
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: गीत की खुदोल्दा तांजरी अलकायानी अमरी सुनुनिंगम दगी गीदमा

0: 哎，不要，不要，还能不好个论黑？妈妈唱过一个咖喱茶呢，你可累人黑，还真挺大的，跑了老娘。你那还多脾气大的老娘女不？哎，啊，一梦的头里脸都不脱了，啊，看他脱了没女不？啊，老娘，老娘，老娘
1: 啊，啊，这东西吧，都光看不的，
0: 嘿嘿，
1: 一把几斤那吧？
0: 老娘，老娘，老娘。
1: 我是啊，阿达的奴才过来还多不？
0: 多多多，阿达参过家境的管理是你来。
2: 哎，八七啊，
0: 好呢，
2: 阿是的，十几年的八七啊，
0: 哈，十几年吧。
2: 哎，妈妈没烧为了嘛呢？
0: 啊啊，
2: 干嘛你怕你八七啊？
0: 耶，怕的比较多，怕
2: 的。行，先去哪了你八七？先去哪了
0: 你？先你比较没得黑，怕是黑。
3: 姨妈，哎，快不怕多了嘛嘞？干嘛你动你？
4: 怕是了陈瑞家是的，可是有白的来的，总他把那一下子是因不出我们了来，阿杜哥呢，没东西扛的把米的慢的，
2: 米个是苦
0: 的，
2: 会
0: 呢，
2: 哎呀，东西你弄的吧姐，吧姐，谢谢谢，总总他先了，哎，他给钱能不能是够？
0: 哎，
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦。爸爸先给你过先给你过
0: 先不要的先不要的先不要的。嘿妈啥时候要错了不给你练的呢妈咪是得了得了练的也是也我呢你是的人是吧
1: 爸爸
0: 哥哥不要偷你的别人
1: 真
0: 的妈练的呢
1: 是吧是吧是
3: 吧
0: 哥哥哥哥
3: 哎快你妈不能的。
4: 不能想你别妈我白来的。
0: 空个弄空个弄，侬呢？铺嘴不搞点么多来过？啦啦啦啦啦啦！谢谢啊，半个啊，谢谢啊，不是累的呢。
2: 阿弟弟，把子啊，空气的半个了些
0: 啊，会会会会。啊，该下的侬吃个不弄呢些？哦，莫不是是是因为搞点么啥子嘛嘞呢？莫啥是说阿莫咪呢不呀？嗯，你什么看不得？老可了可了，啥人没事？妈爸，你现在错一点，为什么打？
2: 嗯，为什么你爸是？
0: 嗯，
2: 三年爱疼，你爱累了，得不到的，心慢的，伊还疼了个，咋不为什么你爸是？
0: 咦，该哈的弄西克了，弄你些，三年爱疼，你爱累了，得不到的，什么苦了都还得了不你都？
2: 三年爱的累到，累胖个累了得不到的呢，嘛亏呢，心慢的，伊工他的一些爸是。
0: 嗯嗯，
2: 啊，爸是。包些新的，家里的设计也没怕的，啊，都到这改呢，要的些，说买呢都不容易过。
0: 嗯，为什么打的？啊，都提不来。一把阿王的，能妈妈比都可以，能好的给，好不卡到旁边路去。
2: 不是，
0: 啊，每不许多，好也好不呢。
2: 会，
0: 啊，能好的很比了。
2: 哦，
0: 嗨嗨嗨，啊，俺俺个专门过。
2: 不会，不是。那可以你，还可以听那不是，那那不呀，那怕了不呢。那特地那台忙了么多年多，那路那皮夹么样来不么碰的，爱那汤米了多呢，都没来过，爱那滚动的来多，那可以那啥那那把啥子去铺的安尼，耶，哎一梦的去给侬们落土给过，那可以都没那来了么过。
3: 姨妈，哎爹们那去这耶，那爸是那生气不？哎可以你哈那不哭来土不生气咋了？
4: 看得来别嘛，可能那姨妈一下那么胖么些的拉阿弥吧喏，一说那当爸么拉些人呢，啥些的。
3: 姨妈，哎弟不许阿们拉没。
4: 别嘛。
3: 干嘛要动你？
4: 姨妈给别嘛，姨妈不搞些害人事的，我让那憨的给你，姨妈一下那宁听侬爱那家伙当爸胖了对吧？학상시주쪽다바나랭옷방암드레
3: 아두나네마이코나에크보이라이라이나파방암미세나트라디아사이나젤라마니
2: 아가이더러게나바니나나헤바동나떠리두보아야암나와르보나코이아니기사나나오부락라니두민나두무코 तू तू तू तू हाई लापो लाए बाजी
0: हाउ हाउ हाउ
2: मवानी सिबू मसाद्रब कौ नाहेबदों तौदा
0: ए कहीं तौरमोदा सजी पीजरगे यंसी
2: बाजी
0: हाई नवानीबो नसाद्रबरने से से से सजी से चौसे नबुथन चौको ये मुनि पोया
2: बाजी
0: कया हाद हाउ नो सारी नो ने से
2: होइने बाजी
0: याम नो लाम नो लेरु मब जानि दना
2: ओ बाजी
0: ओ नुक्सीदा
2: बाजी नुक्सीद्र ये मुने
0: होइने
2: नान मकई चान थंगनबा इफंग फंग दना सराम सदनना लेरम जानि दना इस कया हाद हाउ नो सारी नो से
0: हाय बोया
2: बाजी
0: मसी थादो खर गुमसी असुम लोयरसिको
2: होय बाजी
0: इपा मोय सजी खरका फांबिगे करी करी बुचारम दोनो खंगदेदा
2: आया मना उगे नो मयोल उना वना दुम साब जाने बाजी
0: आ
2: आ लोय बवानी द बाजी जुदु कोखिन खर लोय दुबो आइ खोइन लोय बसुंगम लोय ये अदुगा मखोय दि सिन सोंग दना सानब जी बने बाजी
0: हे मुने हे बोया हौजि के सजि दु लोय खि दोरे ने आ सख सख सख सख नबुक थन चाउको अमुक फांबिनी
2: अखोबाजी तवीर बाजी
0: हाउने हाउने
2: मखोय अनिसिसु हाउने सारीने चौक चौक चौक लैफामनदी लैरक्त्रबनीना कदाय कदाय दनो पंगचत चतपदा अखोयदा कोक हिसंगलपनीदना बाजी
0: हाउने
2: अमतेयिं बियुने नसाय मखै मसा पथरमबदो हौजिती खर काखनो उरद्रने
0: हुइने कांखलेने ए मसासी खिंजरे हे मतु ममांग खिंतो इसी ये उने
2: बाजी
4: बेमा चाउ चाउ हाउब्रा
3: इमा याम ना होइबो मखोसी याम ना फैको इमा आइदि पुग थन्दौ रे एङो
4: इमा ना हाइद्रो अफाबा मिसु लै हाइदना मिनुसी खंगबा अफाबा मिने मखोसी
3: होइ मा याम ना फैको मखोइसा
4: फै आइखोइगी थवाइ मखोइना कनबिरबनि
3: मखोइना सुमपुनदुना थामलादि आइखोइ जेनजोंदुना सानाबदि फांगलारै कोइमा
4: मदुमदि फांगद्रेदना
0: करी तौरगे पंखोंदो खोंगिदुबो हाय नोइनो खोंगतारगा लेकाई वयाम लागतन अमुक तोरनि नतिन हे बोया मखमजिबो कदायदे सेमबिसिगेन हेबो
2: खंगदेदाबाजी कुइन थोंगदोबसु नते तीन मना अमनि लैरिसिना कासिनसिदे सुम खाजिलगेथ थंबिरसिबाबाजी
0: हुइने अदुनो फारद्रा नसि तारानि कुनिदि थंबिखिसि आ मसासे खरखिंजेखिसनो आइदि बोयै मसासिबु फननुसिरेने आइदि लांगलेन तोमबि कौरनि हे
2: बाजिया
0: यमुने मम्मी काशी तरु तरु रोदन साइबुब साइरी ने तौरी से
2: कोई बाजी की सांगा लुन तौब से अब एक पौब तोक्त्री दना
0: हाय जीव बुलुन तौबी बहाई बिछि देखि हेन बा अतै धर्म म लैत्रबनी ने अ
2: फरे बाजी नमी सुफन थेंखरे आई की इमानबा जुद थबक तौबा दोरेन दो बाजी मागा मुक्त उन रुखी के मंगों दगा वारिसि लिर दे आराम लोय दो जानि बाजी
0: सोलो सोलो सोलो आई शो इरु माथा जन बतौरगे
2: बाजी
0: आ हाय अदुगने हौजिक मक्का दि जुद पिथोखि बे यादरी को
2: होय बाजी

0: ताबीरे थामो यानी फिल्म असिदगी पोइरै थोकचोम अमदी संगीता चुंखाम अनिकी अपुनब खोंजेलदा प्रणी युंखाम अमदी मिक्सन रासने सैरेंगबा पोइरै थोकचोम मसामकना सैरांगबैसै तान जक्रिबै सैयसिग लोइनना तांका कसिगी ओइना तोंगान तोंगान बा सैसक पा सैसक पी सिंगदगी मणिपुरी फिल्मी सैसिंग लानथोकचबा मतांगसिद लोइजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयु के पुंग तराम मिनट यांखई तरह चेतले कंगला चैनल की अनिसुब थौरम मीडियम वेव मीटर चहुम निम्फु दशमी कम किलोहर्ज चनीपान मरीफु निथोईदा तोंगान ताब फंबीरगनी ताबीरबा आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगिनी
1: हाय डॉली
2: हाय
1: ना कुरे नंग दुकान ना लाई दो काय सके है नो
2: आई की दुकान है महांग बदो एडवर्टाइजमेंट नम तहाब के ना नमून दता ना गिना लाई नी
1: ए यम पे के नो तो दिया करी करी नो बनंग की दुकान तो फंगे का है इस ना
2: आई की दी वैरायटी स्टोर ने होलसेल सू अदो रिटेल सो दुम याव रेदा
1: ओ ओ अदो ओरे दिने ओली दिया रे दो इनफाल द कोक चलु या द्रो नंग बो
2: ओ अदो मी लोइना मक त योहन बबुंगम दोरी ब्रो दुबो
1: करी की नबोय जोइनो है चिंखोंग सिंगया द नतना अहल नहा मेकुम टिक न तांगरिबा संगाई चैनल हाइब अमगने कंगला चैनल हाइब अमग अनि लेरबनि को हुजिक्तिया
2: ओ ओ ममल दि क्या हायरक तोय जानो अदो आइडी या मगदि तलिगो
1: इस इस ममल गी का सु खली माले
2: खंद्र दि कैनो नंगबो
1: लुपा समरी संगमा दि होरगने सो इस पया मम सुले रमि दोले
2: ओ ओ अदो एतार गदि ख्वाइद गी फव ऑप्शन सी मसिन ओइरनी न दि खले
1: तो तो तो तो ओइ दोइ दे मसिन ख्वाइद गी फव
2: उमना मकुतराम नो उपचरी आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिरउ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कया दा योहन जगे
3: आकाशवाणी इम्फाल की नहारुल की खोंजेल दा मणिपुरी नहा आई बसिंग इवा वारी मचा मदी लीला मसा सिंह संदोक सब की थोरम मा थमजगे दोरी
4: थोरम मसी की दमक नहा आई बसिंग ना इसागी वारी मचा अमदी लीला मसा सिंह थाजिल लखनबा पाउजेल पिजरी
3: हिरम मसी की तंगाई फदब सिंह दी
4: आई बा मसा की चही कुंत्रा मंगा की मखा ओइगदबनी
3: थाजिल अली बा मयेक अदो मितै मयेक नत्रगा रोमान मयेक ओइबियै
4: निंगथी ना नमथोकलाबा मैतै मयेक की फोन साइज ना तरातरुक ओइगदबनी अमदी रोमान मयेक ना तरानिथोय ओइगदबनी
3: वारी मसा की ओइना यामद्रवदा लमाई मरी अदुगा लीला मसा की ओइना यामद्रवदा लमाई निपान ओइगदबनी
4: वारी मचा नत्रगा लीला मचा थाजिल लकपगी अकपनबा मसिंग लैरोय
3: इसागी मिंग फोन नंबर थाजिल अली बखु इगी मखल जोनरा निंथिन लोइना बिरकदबनी अमदी इसागी आधार कार्ड योहन बिरकदबनी
4: आइखोयगी ईमेल एड्रेस naharogikhonjal@gmail.com नत्रगा व्हाट्सएप नंबर 7005489767 दा मणिपुरी नहा आई बसिंग ना थाजिल लकनबा खंगनजरी
3: इसागी खोंजेल फंबाग असगी खुथांग दा मिपुम तिंगना योहलसी लाहौर से थौदांग खोंजेल थोंगना नहारुल गी खोंजेल गी फंबाग दा
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक निमितुंगबा पुंगतरानि थोइतारे मणिपुरी दा निमितुंगबगी पाव ताबिरसी
5: आकाशवाणी इम्फाल गंगबम गांथोइना पाउ पाजरी अहानबद मरोइब पाउ मणिपुरदा राज्य थाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिसिंगनि कुन्तरुकी थौरम हौजिक पांगथोकली असामकी जिल्ला कयादा हौजिक सुइसिंग इसाउगी अवाब मायोकनरी मेट डिपार्टमेन्टना

0: हेलो
1: हेलो मैम,
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम. फोन तो जरे भाई का वापस ले सी से चले थे कि सब नंगों ले में को जरे मैम.
0: कैन यू ऑफर हाय बीनिंग बनो हाय बी यू
1: मैम. मम्मा के कॉलर में आप ने दी फजर फजर वो ऑफर में आमा समझा करे पुनः मक्ष तुम लोग ना बता जा हुए तो मैम आई की मोटा आई ना कई अमत कई गुंबम तंग ने इन सुन थंक चलिंग बाहर हाय जे तारे को मैम.
0: होय होय हाय बी यू.
1: हेलो मैम.
0: ताज़ेरे ताज़ेरे हाय बी यू. हेलो ताबी रे
1: ब्रा.
0: ओ आई ना दी आम पसंद ना दी ताज़ेरी ताबी रे ब्रा.
1: हाँ मैम कैन वन है कोई की मामा आ ताज़ेरे मैम कोई की मामा चिंग मामा वो बेचिंग ना मतलब मचो चिंग जी बुरी अम्म ना नुशी जब
0: तो
1: ताई तो करी छोई की तगे ना याम ना खोने से बड़े मामा वो बेचिंग ना अंदोपो करी गुंबा मतम दमसा चिंग जिने स्कूल चलम दाई नकरे करी गुंबा मत थोम दाई मतम दती इशाब नुंशी ना मकोक तो मन नंबी रका खुदांग या ने सिक गाय इशाब चिंग दुबु सच सच रम मतम दाई कोई ना दुमाइन तो रका सलन गी को अंदोपो हलक पता दी इशाब चिंग जिन मन नंबा कोई ना मन जिन नंब दे बहलक पता दी ची मन नंब दबगे नंब दे है बस ये आठ दे आई ना हाइजनिंग बना इशा जिंग जे कराई दे करी छोई की देगे मैं कोई ना सब छिपा मतम दा करी चारे ई करी थला ई है बगे करी गुंबा ने छा मबुस को अबुसार उरो तलब पुसार उरो करी गुंबा मतंग मोई ना सीजन उरो उसा जो हलक पता मन नंब बड़े तार गति मन नंब दो कोई ना खरा दी फंग गने ब मधुगी मगुन दो खरा दी अदु मम्मी आम दो खोई लेगी दो मैं आम जिंगे तो बुदी याम बना तो रंबे या अदु बो अगी मोट अगी तो उधर बचिंगे तो खोन निंगे इचा जिंगे बो कोटाई दे शोई गी देगे है बदो अदु तंग पिया अगी वाखंडा सम थंदे निंग बहाई तारे को मैं
0: होई होई माने इचा दो चक्र गा हलप मतम दा नसी कदाई दा करी करी मैं थिंग नर पर बोर बसो वारी वताई साबगी मतम मम लोबी हुआ है बनी इसम सम ना है रब दो को ले मना है भी रही से आई दिंग नसी करी करी तो रुपा होए अदुगुंब मैं आम दो खांगा गदी इचा से करम बलन भी द चली वो माना है दोक तो बदी आए अदु बु करम खाई दी ममा मोई ना अदु मक खांगा दोरी बनी याम ना क्लोज ओइबा मरियमा नकना बो मरियमा मचा ओइबा सिंगा ममा मरुइना अदुग मपागासु मरी से थंबा मयाम न फै मसिना मचादो करी मतांग द अचग करी माइकै द चली कहाय बसे खंगदोरि बने अदुन इचा से थबक हलखरे मागे का द चंगरे हायरग लई थपि दब यिंगसिन बि उ हाय बवा फम दुनी थंबि बसे होय होय
1: हाउ मेन अदुना चार्जिंग जे यम ब मतम द क्लास 10 द कि न 11 टू ए फौजे मखोय सिंग जे शुगुंबा chúng bây giờ mới ham bảo người mới không ra bát tiếc sau những cái gì cái nó mới phải bộc quả, à đó là chúng bảo mấy em sinh chỉ mà được cái cái này sao sinh chỉ bốc lên nó bây giờ mặc ta chúng bảo không thăng chỉ lập khách sinh nghề hay bây giờ phẩm chất tham gia những bên mềm,
0: hồi hồi, em phải giờ bảo phẩm này phong độ bị làm bớt đi, hay những ai lấy tiền là thay cái phong độ chơi đi,
1: mày mềm bớt thay cái chơi đi.

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, कनाओ बिरो बनो।
1: मैं खोली जी कितन दी तप्पा।
0: ताबीरा ब्रा।
1: ताबुजी ताबी में।
0: होय होय।
1: तो जरे वे सगुन बन मेनो लेते की सगुन संडे आने में।
0: होय होय। हाय बिरो।
1: मैं आई ने सुन हाय जी गुड आफ्टरनून लेते सो वक्त में वनी कतन सुन कंगन में ना तो बने बा।
0: होय होय।
1: और जे पांग पांग थम शंग वाय।
0: 嗯哼。
1: 啊，会给你们，会给你们，会给，嗯，怎么说？

शुक्रिया दोस्त मेरिना। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित संगाई चैनल में। और आपको हम सुनाने जा रहे हैं गीतों के तरंग और उमंग लिए गीतमाला में फिल्म संगीत। और आप हो हमारे संग, अपनी दोस्त वैलेंटीना के संग।

दोस्तों, हाँ, हमने कहा था आपको गीतों का ये उमंग और तरंग लिए, और इसी उमंग और तरंग की बहते फिजाओं के साथ, ये पड़ती हुई बारिश के बूंदों के साथ, किसी के झलकते हुए नयन और काजल के साथ, ये थिरकती हुई बालियां कलाइयां, चिट्टियां कलाइयां, शायद वो आपका भी हो सकता है। रॉय फिल्म से फिल्म संगीत में ये पहला नजराना है मीत ब्रॉस अनजान के संगीत निर्देशन में, और कनिका कपूर के साथ मीत ब्रॉस अनजान की आवाज़ों में ये गीत है, कुमार की शब्द रचना में।

बड़ी नाजुक और दिलकश होती है ये चिट्टियाँ कलाइयाँ, जो गोरी कलाइयाँ होती हैं वो ध्यान रखें, और इस राधा के लिए तो ख़ास ख़ास कर इस राधा के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जो आ रहा है राधा की ही थिरकन और नैनों की ही बावरी राधा की। ये गान है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2022 की फिल्म है, श्री घोषाल और उदित नारायण के साथ विशाल दादलानी और शेखर रवजियानी की एकत्रित स्वरों में अन्विता दत्त के बोल और विशाल शेखर द्वारा सुर।

और जब राधा निकलती है तो उनके पीछे पीछे निकलते हैं उनके ही ये परवाने, और परवानों की टोली में है फरहान अख्तर, उनके साथ है ऋतिक रोशन, अभय देओल और मारिया डेल मार की आवाज़ों में ये गीत है। फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका जिंदगी ना खो जाए इसी चक्कर में। और इस गीत को संगीत प्रदान किया है शंकर एहसान लॉय ने।

और दोस्तों जितनी प्यारी हमारी जिंदगी होती है उतनी ही प्यारी उनकी स्वीट हार्ट होती है, क्योंकि स्वीट हार्ट हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी को ही कहते हैं और बाकी का सारा ध्यान, बाकी का सारा जो जश्न है वो इस गीत के बहार के साथ आने वाली है। फिल्म का नाम है केदारनाथ और गीत के लेखक अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीत के गायक देव नेगी।

और इसी माहौल को बरकरार रखते हुए अगला है ड्राइव फिल्म से ओ मखना। मक्खन की तरह लचीले अंदाज में ये मखना है ड्राइव फिल्म से ओजिल दलाल और तनिष्क बागची के गायन में। गीत के संगीत तनिष्क बागची द्वारा और गीत में जो लेखक हैं ओजिल दलाल और तनिष्क बागची और आवाजें हैं यसर देसाई के साथ आशीष कौर और तनिष्क बागची।

और काबिले तारीफ है ये झांझरे हैं सोनम कपूर के साथ करीना कपूर की। होश व अंदाज उड़ा देने वाली इस अंदाज में ये गीत है वीरे दी वेडिंग फिल्म से। बादशाह के गायन में करण रुपिन बावा और बादशाह के ही लेखन और करण के सुर।

और दोस्तों, जाते जाते इन परवाने का ऐलान तो सुन के ही जाना पड़ेगा हमें पिप्पा फिल्म से। यह ऐलान है ईशान खत्तर किया, ये अभी अभिनेता ईशान खत्तर और पिप्पा फिल्म से ये गीत है। अरिजीत सिंह के साथ पूजा तिवारी और निशा शेट्टी, उनके साथ है रक्षिता सुरेश आवाजों में। शैली की ये शब्द रचना और झनकार भरी संगीत में यार रहमान।

और बड़ा ही पक्का निशाना मिला है आज हमारे गीतमाला को। इस गीतों के साथ आज के फिल्म संगीत को पूरा करने का समय आ गया है। आज के लिए बस इतना ही, और रहिएगा हमारे दोस्त मैरिना के संग, और दीजिएगा हमें इजाज़त। नमस्कार।

ताबिरे गीतमाला आकाशवाणी इम्फाल हौजी का मुकलान थोक चरी अरीब मणिपुरी फिल्म मदी मतमी सई सिंह मथंग मथंग होइना कुदोल ग्याहन बदा ताबिरसी ओलांग थागी वांग मदसु फिल्म असिदगी आहिबम श्याम सिंह की खोंजेल दा मनी माइरेम्बम न सेरिंग बा जोई श्याम ना सेरांग बैसई कुदोल तमजरी तामिनसी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Akashvani Imphal. हौजगमुक लांथोक चरी रेडियो क्लास चहुम हुम्पुतरा निपान सुबतांकता क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट के लेशन संद्रेम्बी अमति चैश्रा थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांगलोइनना संदोकचब थौरमनी हौजग लोबिरसी रेडियो क्लास

0: 你看一下你能动吗你啊那么多就多了点朋友要么找我找人吧你不那就不能弄起来那里面那个丫头嘛亏着的不没把谁给也不不偷懂的你吧可以吧国夸那就不能把我弄起来那里面那个丫头嘛亏着的不没把谁给也不不偷懂的你吧哎呀啊都怕是不我还有把大的不能不不能避免的要我们能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能 हाय कुइन चकत बनते थोड़े में हलकनी इबाई गाड़ी चकत बनी हलक पगे नन की लुपा समाई बाई पीने
1: बाई तादरो आ फरमल कथिन नाले बच पम तंगा नायो मि मैम ओमजे लफू रही सिरम दोय तोय न हाय तो खबर तो गाव की नहीं बाई
0: कदो गया
1: हे राई बा नुमी तो नचलो पिन ना थोंग बजा जिन हाय बा आयु गा लगे ने बजा प्रभु सब मतम नहीं बाई लेकाय लेकाय छु निसा थिन जनर पगा अखुलो म पादु हे के रुप द थाने के तो निजिंग अब देना मचिन दु दिगे हाजे लगा अखाय पारो बनी बाई ए पुम पई पई अदुग दि नायो मि मग चम तम दि कंदो गुई बुई बाई मसम तो फटा गा बी मोंग ना हामना ममान न गा जो जो कि थागा हे के योले रे मिनी बाई अदै दि खरे पई रु न मागे ममान चंग चंग लगा
2: ए बेबा ए तुम जो नंगे न सको थों स फोन बजे ए नंगे योली गा दुगा नंगे सागा पुन कया लोंगनी तु आयो री बाई नायो मि बे हाबो कुपा मु ओले पा पा करे था गुई बाई नकन नकन न लगे मिले लुनी मे यानो नारो बा न कलक पयाओ ना कि तिन थरक पयाओ
1: तदा तदा नशे निया वार जे देव द्रति
2: मुई ना वो नब ग्राम की नुंगा बके नुंगा तुम बचा ना वो मुखमें नंद गई छोर पुल चिगे तो इन्हीं गया
0: तोशी नहीं बुआ यम चोप किनी मियो यम ताकिनी ना की बुंग नहीं बुआ थकन साग न दिया दे यम चोप किनी
1: हेरा इबाय मेरे की ता सापांग तो जिसी ना करी ता कुछ तो जो आयो क्या मत होने लेंगे ता कुछ तो पानी सीधे
3: हाय योग जाप दे हेलो त्रे इसी पे कबो ने हेग लाए हैं कि मैं जाई भैया इबे
0: हाय हाय कल भूबी नो वा सब जाना बकला तो कलू नमाई जब से न बोले जब से ये नहीं है हे कना जी फोनो हेलो
4: अंकल ये एसपी इंपाल वेस्ट नहीं
0: है ना कहीं ना इबो रोबिन्सन सिमोनन ने नंबर ना ये
4: सीक्रेट नंबर नहीं emergency ler kanda sidi ta tobe
0: no thana ge ongni bini na kari le ni ngo ka dobra
4: ah kan kan ni akal gi chalu pa ga mama na kar ga to upkari ma ga jcb ya ma ga tin jin re
0: ye jcb ga ibo ibo aso pan ne obra
4: yau de
0: gari du dia
4: gari du dia ma le ibena phara ni
0: ibo ngo de sok pura de ne ko कनो अंगन सिंधु मु नंग नलाक दे लिबरा स खबरा ना लाती नहीं बुंगो ओहो ओहो मु गाड़ी म खोल मता है असी वरम तारे अंगल कोन मुन मुन फोन तो रके को अस कार बे जसीबी थिन के नवा
5: कोई आवाज मेरे में तो
0: पाव ताव दी दी फजे ने नुए ने करी के नंग ना करी सिन को सुनो ना इन साबरन है ब्रो तो गरीश पुगे थौर के हर सु लेरी पत्र है मेरे हम सि मरते हम सब इन दिक दो करी के नंग ना गाड़ी थौर चल के
5: बा पैसा के ब्रो
0: करी की पैसा
5: पाव तार में तो
0: तारे कजो भी पैसा नु करी की नु है
5: ओ गाड़ी थोम ने रेम लेके बा
0: लुपा के
5: लाटरा ना
0: फजे ने लुफा लाख त्रा मंगा वो शिश फैशा वो उदवा तो पांडनो खुद तो पी उगाया ना
5: उदवा तो पांडनो ने बवाद है जो बेवानी उदवा तो पालमंदी के साई कार ही नहीं चोक लगा
0: हाय हाय चलो
5: शिवा जिंगा नहीं ना
0: पाव ताव तो ईम कारी
5: वो पीरो थी क्यों वानी ना ते वाने पीरो है क्या ऐसे लो थोड़े
0: हाय ना को
5: शिवा थी के तरोगे ना वो हाईस्कूल तो मिनर को पार्टी तो बोलो बुंदी नहीं ना ते वाने पीरो है क्या कोई कका मना कर ले गाड़ी में फिट तो मार को चला लो रोगे
0: हाय नंग चक्र नो करा करा नो नमाद अब चिंत करो नो सात तो तो वो आई रंग दिल के सा करो
5: अदु दा खनी सलो में तो लो ने
0: तुम क्या लो
5: ठीक है के तो वे वा
0: आई वा है तो
5: यार यार बाबा ना दुसिन लोई रे को तो तो हालात आगे ठीक चल
0: करा करा नो पुंदो जो रोबा थोए हेलेन गोई कुल तन खोल लो यावरा
5: ये ठीक है क्या लंदा
0: रोबा तो मपा सी रे मपा ले दे दा
5: बाबा तो बोले रगना गगामना छमी नरोचरा
0: हेलेन सु मपा दो सी छुई हाजिरा सुब सले दा
5: करी
0: इनमें तुमसे आ नहीं पाई ना लेकिन लाइट नहीं उससे थोड़े दिन गांव में थे लाइट मुंगी मसाला सोचने तो ना अब अपन वहीं पावन ताली इंजीनियर ताली अधूरा ताली डॉक्टर ताली अब अपन

0: कंटेक्स्ट हाई जे बता रहे थी कनो पूज शनि पूजा तो गेरा नारायण पूजा तो गेरा जितना पूजा तो गेरा पूजा तो गुदर पूजक ब्राह्मण है तो ना पंच देवता पूजा तो दे सुनया याती अदो कोई दी विष्णु की धारा द लईवरी ना वैष्णो दे ना आई कोई के पंच देवता से विष्णु ना हान होई अदो के दुर्गा ने लोय पंच देवता लात के वसे मसी करम बलाई संग पंच देवता लात पे के हरे के दिल लईती भारत की तोंगान तोंगान व फाव लाई संग सिंग के मनुंग दा पुरी की जगन्नाथ पुरी है ने खंगरी बा सी खतंग पंच देवता से लाले सी के भगवान श्री जगबंधु से कांग सिंग म तम दमा से सूर्य देव ओइन निंगनी स्नान जत्रा इंगा की पूर्णिमा नमे सिदा हारिबा जगबंधु से गणेश ओइन पूजा तवे इवंगो से लाइनुंग द लेंसन द रत्न सिंहासन द ngan thoi da na hujik lainung da leiba matam se da di mahak se bishnu ni aduga mahak si hujik lai jagabandhu kang singa ba matung tara ma thoi ni pam ba da gi di hari soyon ba thora ma la kan hari soyon se tha mari ni tha mari se da di jagabandhu se durga oi na puja ta oi aduga nav kalebara ma ba thora ma lai madu di चौरा ने सही तारा का हम दो देगी ना तारा तरह पाव की मरक से दा हाउस हाउस एक लाइन बा पूरी की जगह बनो के मूर्ति सिंह से विसर्जन तवे है बती लाइन माई दा मागी लो इसलिए अनोब मूर्ति इसलिए अनोब मूर्ति सिगा अरीब मूर्ति सिगा पुन्ना मई पुलब मुठल लगा मधुर आरात्री ने सिंह बकल लग मोई थोरम पांग तो होगा मधुर शनम में तम्दा जगह बंदु से महादेव ने पूजाते हुए मरे मधु ना पंच देवता आगे दुर्गा वैना शिव वैना गणेश वैना सूर्य वैना अम सुम विष्णु वैना लाप से तोंगान तोंगान बला सिंह तिरुपति दो वे भैया आदु के द्वारका दो वे भैया नत्रगा बदरिका ओइनिंग फम दो वे दसु पंच देवता लाते स्वप्न के कोई जगह बंदो सिखक तंग लाली मरे मतो नमस्सेबु काली के ब्रह्म सनातन है ने सुकोवी
1: कांग सिंह बा थंगान खुदिंगी कोई कांग सिंह बसी नहा सिंह चिंग का अहल सिंह रने चिंग का लाए अद इबु ओमागी मफम द कट पाया बा पोसक ले ब्रा कट पाया द पोलम ले ब्रा मसी मतंग सु थंबेली नुवा गन
0: कट पाया बा पो लोई ले कट पाया द सु ले कट पाया द बसी मरु ओइना कोई के से तामसिक ओइ बा पोसिन राजसिक ओइब पोसिंग अनिसिकत नदी हाइवेग अर्थ दि सांगान सिंबा इरुंगुंबा अदगि ईनो तैब पोसे मरुय ना खै ला खै लाई ला लिब ठाकुर बारी द ला नरीबा गोविंद द कलिबा आइगि लेकाय लेकायगि मानतोप द कत नरीबा सिदा हवाई कत पया द हवाई ओस मसूरी यादि हाइबने सिंबा असुमहायना कत पया दव सिंह सिदि अतु माने कट पे यावसिंग अदो माने मागे नुआई रिप्ति थबी कट के रखी होम कट के रा खोक तो सुमा पुमे ने कल लेर कांडा मधो वाला उन्हें से खाया रेगा मैं आम दा लाय प्रसाद पंग बिल्लाक ने बा आई दी का काइंड ऑफ गेम अरे प्लेजर हम वही ना हराउ नुआई वही ना भगवान की प्रसादी ने लोग बगे सिकुम तोप तोप मताओ मधे जगह वो नुके कांग सिंह बस सीधा मसी सत नबी ओइन उबनी अदो अते अते लाइकाय यामन लेम न सिंग बयावी माय माय थोंगान दा कनाउ ब पामजेब सिंगना फौ संबाय थन न पुथोक तन कत बयावी हायु लालु फजा फजन सेमगा लाइब पुंग से सपा सिंग एबा भाबोक सिंग दसु फजन येन दन दान तखिना तो दन कत सि यावी गोरोंग गोरोंग गोरोंग गोरोंग सिंग मति दि मखन मथेल होय करे मयामे न अदो तसेंग बति कोई कांग सिंह बहाव से मतलब ताई नहीं जाके बा मनुंग द लेंग जिन दुनिया तले रबा माबू लाख पंग अंबमी खकते न उबगे फंगबगे खुदों साधे बतो कोहन नबगे दमक भावाना मैया ममांग द लाग लेंग थोक तुना कृपा पीवी बा अथवा इब तंजा अमनी मधुमक्षु बरसारी तुगे नोंग मरकत यक्षंगी है क्या तरा अदुग मेरा के हाय के तरा नुहाय तांतु द नती वर्षा मतम से करी मतौ गुम ना प्रकृति ना इरांग हो प्रकृति ना फुम नोम गुम ना नोम नोंग तागदगी नुक्से छिटकदगी फौ हुनगे देवगी मरु मरांग सुंगदगी तौब तंजा से प्रकृति ना तोम त न पांग बंगा मोय जगत की मपु ओइब आइस नतेंग पांग बिके मतागम मिया मरते लेंथोर पनि हाइन लोबसु याई
1: मखाता नमु खंजनिंग सिजा कोनुंगी सिंगदिबा कांग सिंगबगी नियम मखल सिमगा एखगी लेका लेकाय खुदिंदा मरोयना ब्राह्मण सिंगना चिंगबिरीबा कांग सिंगमगी नियम मखल सिंगसिगा नियम अनिस्ते दे खेनाबगी मसक उबलैबरा मसिमतान रिकैने थमबिनिंग
0: मानै खेनै गोविंद सिना मयाम गनी आउजे गोविंद की कांग सिंगद्रेगे द कनाम त सिंगनति गोविंद की पुंग मदे सिंगबरा मखाय दे सिंगबरा म लेपानी चौरान पुंग मदे सिंगनै मसि सिंगबा मतुंग ए गोविंद कांग सिंगरे अदो खै सिंगबा यारे हायदना मथंग मथंग मथंग मथंग मथंग सिंगिनी अदुगा मा गोविंद सिंगद्रेगे ददि ए ngawbrun hey kaino gobinda bus singris maitana lerak ta khulak ta phanei sidana mayam joitep thongasu namit ta dringa de loisal laga da lerak khulak kina nongalam dai bhabu joitep songdana khesi sadana khubai sei sakna ta adati magi magi kaino ne joitep haba potama di kang siga mari lene joitep ase karino na mahangning amga do male joitep haba na ti jayadev haba ni jayadev haba kabiyim khak laiki कवि सिने इरम लाइरिक सेवाय खैना अनदो न मगुल लाइखरबा खैगे गीत गोविंद कोइ गीत गोविंद हरि बलाइरिक सेवक तसेंग बदि खैगे श्री जगबंधु की कृपा मंगना इहन बनी हैना मगु थाजन बले जयदेव कवि ने इरम बदा दश अवतार अवतार तरा लौबा नागे सायोन लौरगा अरु बेदे कलके सायो लौब फावसे ओंदोना हाय सिंगरबा मागे वही लेटिंग सिजन बदते जयदेव कवि गुंब लेते हायनरिबा अदु गुंब जयदेव सेना कांग असिगे मतमदा खुबाय सेगे मतमदा अचौबा अगोगी इसैगे थौरम ओय मतम सिददि तोंगान तोंगान बा इसै मखल मयाम बले रासगे सै संगनदे मसिद जयदेव गि सै सिदा मतोंगगा अदुगमदसु खुबाय सैयदना खुबा खुरगा झाल मंगंग सिंगबा करतान सिंगबा याउतना मधु अयाम बने सनै मसिदि कर्म मतम दगे कमदौन तौगिबनो हाइबदु इसैगे मरम दै खैना काहेन खंगु बन तबनिना हाइबद खितंग नमजेद्रे अदुगमरु ओइनदि पार्टिकुलर ओइना जगबंधुगे मतम ददि जयदेव सोयदेव चोंबा मयामन तेंजे लगा सोयदेव चोंबले सोयना हाइरिसे जयदेव दगे सोयदेव लाखेबनि
1: ओजादे मखातान खंजिनिंग से जयदेव हेबसिमगी हेकवाइज पलकाने खेसरी जेतनि जिंजर मसिंग मतंग करमाय तो
0: खेसरी से खैदांगा ओरिगे दा हनसिंगना इमा होय दगे खै अबो होयना कैनु खेसरी से बोय ए सुभद्रा से साख थोगा हाइब हाइतेदना हवाई जो हाबसिन तुम जो हाबसिन याम अदुन ओनही बनी हाइदना हनसिन हाइबी अदु तसेंग बति आइ क्वेश्चन द पंगिबा खिसरी सिगा असोम द मनुंग द ओरिबे खिसरी गा मानदि आ खोइगी खिसरी सिदि क्रंग क्रंग लावबा अदुगा साख तंग तोबने असोंगी खिसरी दि सबे सबे लावे आ खोइ याम महि नायरपना ओरपा तुम मोरो करी करा लो इन थाक पा अधु मखल बिन सा सा अमनी मासे अना बने सा नहीं अधु का अकोई इसी दे दे किसी कर सार हो दिस तुम मोई को अने लाऊं नहीं मासे दे लेकाई लेकाई के लम लम के होंग बने हैं थम जगे
1: मतम सुतेंसी लग पगलों ने ना उजारे की खंजे निंबा मख लेजरी बसे कोई की कांग चिंबा कांडा लेकाई की नहा सिंह नटक अहल सिंह कांग चिंबा मतम डा कांग की मथकता अखोगी आंगंग सिंखा तोंगा हुमायने पाइमने सिमा खाजि खाजि उजे मसिना करम करम बा मसिदे दे सागे जात खायबरा ममंग दे दि कांगसि मुतम दि खाय देबे मता आमदि थामबिग्रे अदु बु कांग मथक त तोंग दे रिबे मे सिंगसि गोइबे सागे जात लेबे मसिम तंग दे
0: कांग मथक त तोंग बा सिंगसि सागे जात अकक न ब लैति लै अदु गोविंद गुंब दे दि अखन न ब नोय मंगा दि हेन तोंग ब यारो नोय अनि हम तोंग ब यारो हाय ब मा पिने अदु ग लैर खुलक कि सिदि मधु अकु अदु मकन मथिंग बलैति पामजब सिंह होय मधु हाय हायदरसु अखै सिंजा खजाक सुमदब सिंह दि कहां नते अदु ब नतरगति मागे चौरा पकांग सिंह बियावने थोले बमी दो अमदु अया मन अदु यावन बगि सने बिले
1: लेपाकिनि थौ यार ग चिंगबा कांग सिंह बगि थरमद कांग सिंह बगि थौरि सि पाइ बगि नियम लेब्रा कांगनुन सिंह मतांग नगा थंबि मगदि यामुगा जे
0: कांग सिंह बसिदा मसी निथाउनो पाएगा दमने सेना महारानी ने पाएगा दमने हाइबर लेती मतम ने समति पुलप न मानन हुई ऐ कोई न कोई से कांग सिंह अम्दाय था 마야는 수 운하리 버도네 그 오리사기 닝톡스나 뿌리기 닝톡스나 막 그때 섬짓 빠이르가 강 생독바 아돔 우비랑가니 닝톡수 장리 버수 일본의 맘에 뜻이 섭만해 나도나 휴밀레이션 한탄바 야는 토이르 버싱도 한탄바 야는 토이르 버싱도 싱카피바 아두기 꿈하이 아마니 하이나 마시 사이타니
1: Lusilakpada Nasigi Horak Liban Harul Singh Aduga Mirol Singh Da Kang Chungba Amasung Konai Sigin Ha Singh Habishing Matang Da Karikaramba Pau Jail Pibin Magi Thamiram
0: Naha Singh Sino Ola Kadao Bahan Magta Ni Karikuma Laiwa Amada Ing Tapna Marata Na Amaga Amaga Nung Sinana Sana Sinana Matiang Panana Laiki Hairagadi Inka Laiwa Naha Singh Sige Pung Ning Da Nung Sibagi Masin Manao Ibagi Universal Brotherhood ki wakal lola saya masih layan bersumi, madu layan na maram mayam ki manung da kang sing bahay bersisu amani hana tamzege.
1: Ya menungai zai ozang si Sri Sri Govindaji Temple Board ki member oina layviri ba kaksing tabam ozabra zamani sarmana adungi tang laba matam kaya buka thupiraga. Kang Singh Bama Sung Kunai Sigina Singh Habisigi Matangda Yaman Marik Sumba Pogdam Thambibagi Damakta Lakshari Bat Naharugi Khonjilgi Mekedegi Ozabra Zamani Sarma Bu Thakachabu Punuk Seri
0: Aini Su Thakachari

0: भने बाहिरी भोसी त यङ ने थाक दाक फिज नुपि अगि अरुप अताउगि लैटेङ्गि पोलम सिंह नुपिन केबद सिजनब कोस्मेटिक मयाममा सिन फै हाइदन सो तोरोगलि सिबु खरसु सिजनदब याब्रा हाइबने
1: यारे यारे नंगांग नरे गाइदने आइ ऑफिस थेङबने आइ आइ आइ आइ थेङेब आइ आइ चलुखिगे युमसे मिलै तबने को
0: तमो
1: काइदोरोगे
0: हा काइ खुवाबा
1: काइनो हाइरो
0: नना हान पालिसिंग अहोम दंग पिदया दिन हाइगिबदो अदु पिबिरम रोय ड्राइबने
1: ए नंगिसे एरोबिक चोंबगि थामगि फि अदुगा सारी बहिदा लंगथसिगि पिनबने दुरो
0: आइने एरोबिक चोंबदगि सारी थगलि बहिदा लंगथसिङासिदगि अनायक अमत तौखिद्रेदना येबने कुचुगसे फजे थकत्रा
1: फजे
0: निमाला इसिनेबा मय तंगोना खंबिदा बायवान
1: ओ नंगि सेलदो आइगि मोन मायादे थममाबने
0: हसेंग बैरो
1: आइ आइना हायगदा बायबबो मौन कनेक्शनिंग अत्रा खोंगाव मक्क अमा सेलगा सोरोग लमजाउद चलकलाबा अदुगा नसा फनबगी मिंगदा आइगी इज छोप थबक हेक तौराबा नंग लोयरबनी मासिमदि खांग
0: अस तामोसिदिबा
1: नंगना चटकदौरिने तौरिदो बाबुंग हलकत्रि फाउदि युमदगि सथोप यारो हरिसिनि
0: होय हायबा खैनो खांगदि मिसि
1: आइसले सथोप यारो को
0: अस सिदिसि तमानिने हेलो इसितमा नंगबो थोराबो होय आइसु थोरंग नबा तौरगे ओ आइना हायबदो होयनि अदो लाइ खोरमबा हायबदुदि नेङासिदि लेपसे हायबा अदुगि मफत पार्लर द मुक्त हायजलुसे सक्से मुक्त सेमगे हायबनेमि माइग सेमत नखथो हनगेबा होय पिसुंगसे फोइदब कुइरे पागजे लोइने चरनर पोनिनि सेनंगबो होय होय मवै खुसु फजब पामिने कैनो केबे याइदना मोइले साबिने त केबे याब्र आओ इसे होय होय होय फोनदो थमो आइसु लोसेलगा थोला दौने सेलुरिब फिसिदि यारारो हांगे आंगांगबो मचुगि फि फनेक सुतो अदुइना सेलगे

0: गीत की खुदूर यानी सुबदा मुकीस्तगी एम मुक्ता मिनसी।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

हमें पता है कि आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ रितिका। उन्नीस सौ 91 में आई फिल्म साजन का आपने ये गीत सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने। कहते हैं कि जब किसी के लिए दिल में सच्ची मोहब्बत हो जाए तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगता है। ये तो कहीं ना कहीं हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर महसूस किया होगा। कुछ रिश्तों को इजहार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आंखें ही दिल का हाल कह देती हैं।

आपको मजा आ रहा है? भाई मुझे तो बहुत आ रहा है. प्यारे प्यारे मीठी मीठी गीत अपनी श्रोताओं के लिए मैं लेकर आई हूँ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. ये गीत आपने सुना 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक का. संगीत से सजाया इस गीत को आनंद मिलिंद ने और इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक और उदित नारायण ने और इस गीत को कलमबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर समय रहेगा मार्केट मंत्रा का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जानी और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया।

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 550 points. Nifty settles at 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ. केंद्र सरकार ने 19 सब सेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: एंड बिफोर वी टेक आवर मेन स्टोरीज इन डिटेल, हियर इज अ डिस्क्लेमर. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने, कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया. निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड अराउंड 0.7% लोअर टुडे. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL टेक लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक, TCS 0.8% और Sun Pharma में लगभग 0.5% की बढ़त हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks Quality Tilt dropped 1.92%, Realty fell by 1.91% and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63% and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined and 195 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था. सिद्धार्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है. शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है.
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक कहा. जब से मैं कहूँगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई, उसके बाद से जो बाजार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो वो अभी भी कायम है. और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच, जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया. 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पे आक्रमण कर दिया है और ईरान भी डटा हुआ है. और ईरान ने भी, मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है. ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है. ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है, जो तेल लेके, तेल के जो जहाज हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज हैं, तकरीबन हमने देखा एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया, उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पे बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है. तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाजार पे भी ये उसका इस अनिश्चितता, इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है.
1: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में हमने बढ़त देखने को मिली. अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है? क्या आज भी हमें उसका प्रभाव, मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
2: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा मैं बाजार में आऊंगा. तो शायद और बाजार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है. और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाजार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड होगा. और जब से वेस्ट एशिया, चूंकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है और इन्फ्लेशन को लेके सारी दुनिया में चिंता है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है. शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिजर्व जब अभी इस महीने के अंत में वो बैठेगा तो शायद हो सकता है. तो इस सब का कहीं ना कहीं एक मार्केट पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और शायद इस वजह से निवेशक शायद थोड़ा इस समय अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहा है.
0: सिद्धार्थ, क्लियरली द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट वाज सीन इन द सीपीआई फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ मे. नाउ यू हैव द फिगर्स for the month of June. The wholesale price index figures have also been released and manufactured products are also seeing a hit in terms of a price increase, and that's clearly affecting consumers because of what's happening in the West Asia crisis. What is the strategy of the FIIs, FPIs? They've been the net sellers in the market today also to the tune of 3,062 crore rupees. DIIs once again, as it's always been the case, holding fort, short covering 2,172 crore rupees. What would you advise a small investor in this market? Should they exit their position? Should they hold on? Because a lot of valuations which went up has suddenly come down by 20-25%, especially after Trump has reinstated the blockade on Iran and its ports, claiming that there should be a reimbursement of 20% of all cargo that is going through the Strait of Hormuz now for guarding it.
2: See, Arjun, answering your first question, what is the kind of strategy or what is the game plan by the FIIs or the FPIs? I would say if you look FIIs and or FPIs, you may call them, they had been exiting Indian market for a long time. And as of now also, as we talk, I think they continue to be net sellers, except in recent days, we can say we've seen FIIs returning in a big way in the Indian debt market. And also, if we were to look at the data for last week, I would say even in the equity market, we've seen FIIs returning on some days. So what but yes, and why this FII is returning in the Indian debt market in a big way? The surge in investments in the Indian debt market, basically, if you would recall, the government took certain steps to ward off the impact of the West Asia crisis, and we had brought down the withholding tax as well as the capital gains tax on the debt market. Mm-hmm. Plus also you would see to ward off the impact on the rupee, we had also announced FCNR bonds, foreign currency bonds by the NRIs, people based, Indians based outside. So I think all that has had a positive impact in last 15 days, last fortnight. Plus, coming to your question on the what should a small investor do, because as you said, some of the valuations which had gone up have also moderated, have come down. See, I think for a small investor, always the advice would be that even whenever you are investing, invest with for a medium to long term. But yes, and always these kind of situations where we have so much of uncertainty. And post West Asia, and I would not only restrict it to West Asia, I would say since Mr. Trump assumed office, I think there he's been unleashing uncertainty in the entire universe, in the entire world. So in these times of uncertainty, it is also an opportunity for any investor, be it a small investor or a long investor. So I would say pick your stocks and always have this mindset of investing for at least medium to long term. And by medium term to long term, I would say 3 years to 5 years. So if that is unless you have that kind of outlook, I don't think you should be venturing into this market when things are so volatile.
0: What's the mindset in the metal space right now? In fact, Nifty Metal went up by 0.63%. There is a lot of rejig happening as far as the substitution is concerned, one metal for the other when it comes to using in manufactured products. For instance, aluminium in place of copper because of the valuation and the prices at which copper is sold vis-a-vis aluminium. So what would you say when you look at metal? And the other being pharmaceuticals and healthcare, which are seen as defensive stocks, they always tend to do well despite the market falling.
2: See, I think pharmaceutical and healthcare, I think, as you rightly said, Arjun, are stocks which do not get impacted with these kind of situations or these kind of events unfolding. So I think that is one area which is always, I would say, something investors can always bank on. So, and coming to your answer, especially post West Asia, we have seen this trend of aluminium being replacing copper, as you rightly said. Plus, also if you look at the conventional rules, are also being challenged in these times. If you look at gold or silver, also usually in times of crisis, we have seen gold prices usually go up. But this is a peculiar situation we are seeing where gold prices are actually coming down. Mm-hmm. But yes, I think if these kind of the world is also kind of coming to terms with these kind of situations, so I think we need to for some time we need to keep a watch before taking a final call on these things.
1: Siddharth, hum agar auto sector ki baat kare, agar hum kshetra vishesh baat karte hain, to auto sector mein bhi aaj humne dekha ki giravat aayi hai. Kis tarike se ye jo vaishvik star par jo ek paridrishya abhi bana hua hai uska jo ek ripple effect hum domestic market mein dekhte hain aur phir hum ek sector specific mein dekhte hain, to ise aap kaise dekhte hain ki क्या इसके कारण रहे होंगे, क्या सेंटिमेंट होगा इसके पीछे?
2: नहीं प्राची, जहां तक ऑटो सेक्टर की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ऑटो सेक्टर पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हो. ठीक है, मैं ये मानूंगा कि जहां तक तेल की कीमतें हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है और ऑटो सेक्टर का उससे एकदम एक सीधा जुड़ाव है. लेकिन उसके बावजूद अगर आप जो लास्ट फिगर्स रिलीज हुए थे ऑटोमोबाइल सेल्स के, वो उनमें जो तेजी है वो बरकरार है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जो भी डोमेस्टिक मार्केट में जो बिक्री होती है गाड़ियों की, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, चाहे फोर व्हीलर्स हो, इवन कमर्शियल व्हीकल्स का जो डेटा है वो बहुत ही रोबस्ट है. तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन की गिरावट को हमको किसी तरह के ट्रेंड को मान के चलना चाहिए. और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हिंदुस्तान बहुत अग्रणी देशों में से है और मुझे लगता है इसमें हमारी अभी भी जो मजबूती है वो पूरी तरह से जो है बरकरार है.
0: Aviation stocks have also taken a hit today because international travel might be impacted by what's happening in West Asia. Clearly, looking at travel and tourism and all the sectors connected to it have been affected. Why has realty fallen by 2%? Is it something to do with disposable income and investment income of IT professionals in the US?
2: Arjun, I would say as far as your answer to aviation stocks, obviously the answer is very straight. If whenever crude prices go up, obviously it has an impact on the ATF prices, aviation turbine. So there also, in, at least for our domestic flyers, the government has taken a, has set a base price for ATF, and beyond that there is a subsidization by the government for the airline companies. But yes, obviously once the ATF prices goes up, obviously across the world, and also there is pressure on our own currency, obviously, so this will have an impact on the tour and travel companies. But coming to your other question was on,
0: well, I said about realty, because yeah, it's reality. Also taken a hit, and yeah, it's all dependent upon incomes of those who are looking to buy, get into housing.
2: So, coming to reality, yes, what you said is that is one of the reasons. Plus, also, there is a fear of interest rates going up. So, if there is a fear of interest rates, is if you look at though RBI for our own central bank, yes, they have still maintained that they still maintain a, they haven't changed the stance, so they haven't given any indication of interest rate going up. And as of now, what the inflation for us remains within the band 2 to 4%, whatever the band 2 plus 4 plus minus 1 plus minus 2. So I think that is not an issue. Yes, for obviously if you look at the realty stocks on a bigger scale, yes, there is an impact because of that.
1: श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.3%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7%, जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक, तथा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ. वहीं ताइवान का ताइएक्स लगभग 1.5% फिसला.
0: Move on to the next story now. Government today released the country's first trial index of services production, ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index with 2024-25 as a base year covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. The Ministry of Statistics and Program Implementation described the subsectoral ISP as a major milestone in improving the measurement of India's services sector and strengthening the country's statistical system. It said the comprehensive overall index of service production will be introduced after evaluating the stability of the trial series and expanding its coverage. The first set of data points to broad-based growth in the services sector. 14 of the 19 subsectors recorded double-digit growth in April this year compared to the corresponding month last year, while almost all remaining sectors also registered positive growth. With services dominating our GDP calculation, how do you see the ISP actually giving it a further boost in terms of output and productivity, and of course the related employment that goes with it?
2: Arjun, I think it's a very welcome step, especially because till now we had an index of industrial production. So now for the first time this bringing out on a trial basis, definitely this index of services production, and almost, and the most heartening part is also the data is reflecting almost a double digit growth in 14 subsectors, and though there is obviously a positive growth in 19 subsectors. So I think it's a very hard, I would say a welcome step, and would also kind of give us stabilize and give us a more would also acceptable in terms of our own statistical transparent system.
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में. भारत का थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जून में सालाना आधार पर बढ़कर 9.8% हो गया है, जो इस साल मई में 9.6% था. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने WPI महंगाई दर बढ़ने में मिनरल ऑयल, खाद्य सामग्री, मेटल का उत्पादन और रसायन तथा रासायनिक उत्पादकों का उत्पादन मुख्य कारण रहे. प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिक वस्तुओं में महंगाई दर में मई में लगभग 5% से बढ़कर जून में 7% हो गई है. ईंधन और बिजली में महंगाई दर में 30% से ज्यादा की गिरावट आई और ये 27.4% हो गई. निर्मित उत्पादों में महंगाई दर अपरिवर्तित रूप से लगभग 7.5% रही.
0: Wholesale price index, we've seen that CPI for the month of May and June have been affected by geopolitical uncertainty and of course the imports into our country. We've seen that there has been a trade deficit of merchandise trade as well. How do you see this being mitigated? Because now we can see that WPI has gone up to 9.87% in the month of June. and it is just marginally above the month of May. How do you see this being mitigated?
2: I think, Arjun, if things would have gone the way they were, we had seen post an agreement between US and the Iran on the West Asia, on the Strait of Hormuz issue, I think things would have, we would have got even better numbers. But yes, at the current level of crude prices, we could see this pressure on our on the inflation. But if things settle down, I think we have kind of peaked and things should start moderating from here.
0: Our output PPI for June is also at 109.9, just 30 basis point above May.
2: Yeah, that is another heartening thing which we have started, the price producer index, obviously, because there are, if I would say, point out two, three major differences, because that is when it is also something we are now trying to move away from wholesale price index to producer price index. And mainly three things, because this will track the prices at the factory gate. Plus, it would also exclude the GST as well as the margin of the traders. So it, and also then it is also something which the we would be also following the International Monetary Funds, the guidelines of IMF, and also join the club of elite G20 countries, which also come out with producer price index.
0: In more news, Commerce Secretary Rajesh Agrawal has described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement set up as a defining milestone in India's trade journey, saying it establishes a future-oriented economic partnership between the two major economies. Briefing the media in New Delhi today, he said the agreement will come into force tomorrow, marking the beginning of a new phase in bilateral trade and investment relations between India and the UK. Mr. Agrawal said the agreement is among India's most comprehensive trade pacts, offering broad sectoral coverage while reducing tariff and non-tariff barriers. He added that it safeguards the country's sensitive sectors, including dairy and agriculture, while expanding market access for Indian goods and services. The Commerce Secretary said the agreement goes beyond conventional trade liberalization by covering areas such as digital trade, government procurement, innovation, MSMEs, labor and environment. Our import duty is going to be zero. How do you see this impacting our exporters?
2: Very heartening for us. Again, a very welcome step, I would say, because it is opening almost 99.5% of UK market for our exports. And we have also been able to safeguard our agriculture sector, as well as we are also getting opportunity. We are getting access to UK marine industry plus marine sector, I would say. And also it is also going to help our labor intensive sectors like leather, textiles. So I think all in all, a very positive, especially in these times.
0: Let's have a look at the crude oil market now. Global crude oil prices rose today after the US reimposed a naval blockade on Iran, while renewed hostilities between the two countries heightened concerns over energy supplies through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 4.07% up at $86.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.5% up at $80.10 per barrel when reports last came in. Last time there was a rollback of hostilities was when oil prices crossed $100. What is going to be the U.S. reaction to this rise in international crude prices?
2: See, I don't think this increase in prices is happening only because of U.S. reaction. The announcement by Donald Trump shutting down the Strait of Hormuz, and he's talking about a 20% tax. And on the other side, Iran saying we will not allow any movement or would not allow this kind of, you know, tax to be imposed. And if at all anything, it has to be a tax, it has to be a very minimal amount. So I think till there is an agreement between the two sides, I think we should see this these kind of levels, and which is not a good news for India.
0: And what is our imports like right now? Do we have the strategic petroleum reserves to counter this? We're already taking steps in the form of blending of petrol so that, you know, prices are affordable and it is accessible to the market.
2: Arjun, we have already taken steps, but yes, and especially the government had taken, as you talked about, ethanol. Plus, we've also diversified our sources from where we import our energy needs. But even then, the price going up is not a good news for us, and anything below 80 is good for us. But still, government of the day has tried to shield the consumer from these high level, and we haven't seen much increase in retail prices except one or two times when the prices were increased.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 2.05% higher at 1,43,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.37% up at 2,25,080 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.7% बढ़कर 1,42,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 3.2% बढ़कर 2,24,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी क्योंकि समय की नजाकत है मगर एक संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी
2: नहीं देखिए गोल्ड एक मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो इस पूरी इस आज के टाइम में उनको उनमें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चैलेंज हो रहा है जब भी कोई क्राइसिस आती थी पहले देखा जाता था गोल्ड के दाम ऊपर जाते थे लेकिन आज आप देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं जबकि दुनिया में पूरी तरफ अनिश्चितता है शायद उसका एक कारण है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है साथ साथ शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गोल्ड में तो मुझे लगता है मतलब ऐसे टाइम पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड है मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस इसी लेवल्स पे रहेंगे अगर ये हॉस्टिलिटी बनी रहती है बिकॉज अमेरिका में एक ये भी फियर है कि जो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ही रहने वाले हैं तो लोग जो है गोल्ड से सिक्योरिटीज में मूव कर रहे हैं
1: जी धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए
2: धन्यवाद
0: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर द हेडलाइंस बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स एट 24,052 गवर्नमेंट रिलीजेस द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन फॉर 19 सबसेक्टर्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: चलो घंटी बज के चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए उधार रख के जा तो रहा है लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और जो गीत अभी आपने सुना वो था फिल्म दुश्मन से लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 10वां पेयजल संवाद आयोजित किया। बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेपाल और भारत ने कल ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त विदेश सचिव मुन्नू महावर के साथ बैठक की। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा. गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे. एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर दिल को हम मसलते रहे. तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे. जिंदगी सरखुशी जुनू वहशत, सब उन्हीं रास्तों पर चलते रहे. उम्र भर हम दिल को मसलते रहे. एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे.

ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं है जहां के लिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

मेगाहर्ट्ज। जब किसी का सपना आपकी आंखों में बस जाए तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम है, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां दो दिल एक ही ख्वाब साथ देखते हैं।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि भरोसा है जो हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, और जब किसी का साथ दिल से मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दुगनी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनकर साथ निभाता है। तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, इसमें चेहरे का अपनापन अच्छा लगता है। तुंद हवाओं तूफानों से जी घबराता है, हल्की बारिश का भीगापन अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यकीनन सच्चा प्यार यादों में नहीं, निभाए गए वादों और हर पल साथ खड़े रहने में बसता है। और जब रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो दूरियां भी उस प्यार को कभी कम नहीं कर सकती।

निशी गंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ पल शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से जिए जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जहां सुकून भी हो, अपनापन भी हो और हर धड़कन में बस एक दूसरे का एहसास हो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है। सच्चा प्यार किसी एहसास का नाम नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले उस रिश्ते का नाम है जहां हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनापन और सम्मान महसूस होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे। वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, उसके दिल में तू मेरे वास्ते उल्फत लिख दे। वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, उन किताबों में बस एक लफ्ज़ से मोहब्बत लिख दे। मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सास में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalation.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब ये दिल किसी को सच्चे मन से चाहने लगता है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। और मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो बिना कहे भी सब कुछ बयां कर जाती है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं, उनकी मौजूदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है और सच्चा प्यार एहसान का नाम नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते का नाम है, जहां अपनापन, सम्मान, सच्ची मोहब्बत सब कुछ साथ होता है। उसके साथ रहने से हर रात चांदनी और हर पल खास लगने लगता है। प्यार वही है जो साधारण लम्हों को भी यादगार बना दे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब दिल को उसकी अपनी धड़कन मिल जाती है तो जिंदगी की हर राह खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस वो दिल से दिल तक पहुंच ही जाता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर दिन एक नई मुस्कान और हर पल एक नई खुशी लेकर आता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं दिल चुनता है। जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी आपका सुकून, तभी मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है। सच्चा प्यार वही है जहां दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपना लेते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गम गुसारों की बात करते हो, किन सहारों की बात करते हो, हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, क्यों बहारों की बात करते हो। हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, किन सहारों की बात करते हो।

कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, वे दिलों को करीब लाने का एक खूबसूरत जरिया बन जाती हैं, बहाना बन जाती हैं। जब नजरें मिलती हैं तो कई अनकहे एहसास अपने आप दिल तक पहुंच जाते हैं। शायद प्यार की शुरुआत भी एक ऐसी ही प्यारी मुलाकात से होती है।

छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे, बंद आंखों में मेरी झांकते रहना उनका, शब बनाती है यूं ही लम्हे सुहाने मेरे, जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे जमाने मेरे। दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि खास लम्हों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की सबसे प्यारी याद बन जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं एहसास से मापा जाता है।

और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक. सुरभि को दीजिए इजाजत. हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में. और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, जिंदा है सर पे मौत की परछाइयों के साथ। हमसे बिछड़ के भटकेगा हमदम तू देखना, दिल में बसाया है तुझे गहराइयों के साथ। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर एहसास अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। सच्ची मोहब्बत को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें और मुस्कान ही दिल की हर बात कह जाती हैं। प्यार वही है जो हर धड़कन में सुकून बनकर बस जाए।

इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, यार लोगों से मशक्कत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर ये नसीहत हर किसी को नहीं की जा सकती।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नहीं होता बल्कि आंसुओं को मुस्कान में बदल देने का नाम है। जब कोई दिल से आपका अपना बन जाता है तो उसकी एक मुस्कान ही हर दर्द को हल्का कर देती है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने में होता है। जो प्यार दिल से किया जाए वो हमेशा इज्जत, दुआ और खूबसूरत याद बनकर दिल में रहता है।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि मासूमियत मुस्कान और दिल की सादगी में होती है। जब किसी की भोली सी मुस्कान दिल को छू जाए तो हर पल अपने आप में खास हो जाता है। प्यार वही है जो सादगी में भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ ले।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत शांत और सुकून भरी बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम को इस बेहतरीन से नगमे के साथ।
1: ये रातें, ये मौसम

दोस्तों पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें जितनी बार सुनिए हर बार ये दिल को नई ताजगी दे जाते हैं और अब पेश है एक और अनमोल धुन जिसमें प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास दोनों साथ चलते हैं

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। दोस्तों रात धीरे-धीरे और भी हसीन होती जा रही है और इसी खूबसूरती को संगीत के रंगों से सजाने का सिलसिला हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं।

दोस्तों रात अब अपनी पूरी रौनक पर है और हम भी इस सफर में आपके साथ हैं। दोस्तों पुराने गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत एहसासों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की सादगी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

दोस्तों संगीत कभी पुराना नहीं होता बस वक्त बदलता है लेकिन अच्छी धुनें हमेशा नई सी लगती हैं और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत

दोस्तों पुराने गीतों की ये खास बात होती है कि ये कभी शोर नहीं मचाते बल्कि धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाते हैं उन यादों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई हैं। दोस्तों चलिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, रात का ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और संगीत की मिठास भी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को इस कार्यक्रम हमराही से विदा दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार

0: के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उपमिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री

0: श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in the India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

वाह क्या मधुर गीत था दोस्तों पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन इन गीतों की मधुरता कभी नहीं बदलती हर शब्द हर धुन हर एहसास सीधे दिल तक पहुंचता है चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ ये गीत अपनापन जीवन की सरल भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है आइए बढ़ते हैं उस गीत की तरफ

दोस्तों, पुराने दौर के संगीतकारों ने जिन धुनों को रचा, गीतकारों ने जिन शब्दों को गढ़ा, वे आज भी उतने ही ताज़ा महसूस होते हैं जितने उस वक्त थे। यही वजह है कि पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन इन गीतों का जादू कभी भी कम नहीं होता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही बीते दिनों की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

दोस्तों सचमुच संगीत भावनाओं की ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। पुराने दौर के संगीतकारों ने धुनों में जो जादू भरा वही जादू आज भी हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। हर धुन एक नई कहानी सुनाती है और हर गीत किसी ना किसी एहसास से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों रात की इस पहर में जब कोई मधुर धुन कानों में उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के साथ।

दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं लेकिन दिन का या रात का कोई भी पल हो अगर कुछ वक्त के लिए अच्छे संगीत के साथ बिता लिया जाए तो मन फिर से तरोताजा हो उठता है। आइए इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कहीं प्रेम की, कहीं बिछड़ने की, कहीं उम्मीद की तो कहीं जीवन को मुस्कुराकर जीने की। और कहते हैं कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता, यही कारण है कि वर्षों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं और हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, पुराने दौर का संगीत सादगी, मधुरता और भावनाओं का सुंदर संगम था। हर धुन में अपनापन था, हर बोल में जीवन की कोई ना कोई सच्चाई थी। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपने शब्दों और संगीत से दिल को छू लेता है।

दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए अलविदा. मुलाकात होती है आपसे अगले घंटे अगले कार्यक्रम भोर सुहानी में.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री

0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of the tariff lines on the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT El Bahia and MT Bomnasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said, "The ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation." India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. 10 more reactor units with a combined capacity of 8,000 megawatt are under construction. These reactors are pressurized heavy water reactors, boiling water reactors and light water reactors. The country is mainly using natural uranium fuel to run the pressurized heavy water reactors to produce nuclear energy. Government said that India is steadily expanding its nuclear power program to strengthen the energy security and support clean economic growth. A major outcome of the 3rd India-Australia Annual Summit, which was held in Melbourne last week, was the finalisation of the administrative arrangement under the India-Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app-linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities alleged owned and controlled by him. The ED has alleged that proceeds of the crime generated through the illegal betting app were routed into these entities. The flood situation in Assam continues to remain critical, with more than 37,000 people affected across 6 districts. According to the latest

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भोर सुहानी, जहां बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट की और जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज हम साथ रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत गीत और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर उसी भूली हुई बातचीत के नाम है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और शुरू करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल कैसा था उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ, जो जिंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
0: कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है या ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी मुस्कुरा देते हैं? उन्हें महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, बारिश की एक बूंद, तितली या फिर मिट्टी में खेलना उन्हें बस इतनी सी बात खुश कर देती है। शायद हम बड़े होते होते खुश रहने की वजह बहुत बड़ी बना लेते हैं। आज कोशिश कीजिए एक छोटी सी खुशी ढूंढने की। किसी अपने को कैसे हो पूछ लीजिए, या थोड़ा सा आराम करिए, या फिर आईने में खुद को देखकर कहिए मैं ठीक हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान अपनी जिंदगी की किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी इज्जत दीजिए और सबसे जरूरी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार हमारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है, है ना। ठीक इस खूबसूरत गीत की तरह जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।